0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISET संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देशभर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometres. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur to Jharsuguda, 4th line, Katni to Pendra Road, 4th line, and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometres. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bengarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Umalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs. Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. These routes cover 11,000 kilometres railway networks and four-lining of 2,000 kilometres has been completed. These approved projects for four-lining are related to the high-density railway networks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the 5 railway projects worth over 10,000 crore rupees will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. The Prime Minister also said that the Cabinet decision pertaining to 3 multi-tracking projects worth over 10,500 crore will add additional railway network and improve connectivity across Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. He added that it will also encourage tourism, especially heritage and wildlife related tourism, and lower logistic costs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said, India has focused on empowering women financially, socially and through education skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth. International Atomic Energy Agency, IAEA, has referred Iran to UN Security Council for the first time in 20 years, citing Tehran's failure to cooperate with a long-running probe into uranium traces found at undeclared sites. The IAEA's 35-member board approved the resolution by 23 votes to 5 with 8 abstentions. In the U.S. Open, Americans Ben Shelton and 11th seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Aryna Sabalenka will face 3rd seed Jessica Pegula, while 4th seed Coco Gauff will play Alina Rybakina of Kazakhstan. And that is the end of this news bulletin.
3: Yan akaswani churana shimang dilioni watakpa hindi aro english khoborangko khnasowa ha somoi da o dok minutes kingba jonga ha dalna don sugman namgpa chanchianiera je mangan khushi ongbangwa sakgaban rangkoba khushi ongatna mangpa uska yan any frank ni chanchibe wale agangpa khatarangwa na shimang na dalni program rangko sulsu somerang baksa wiatinga Tringni dok chibongo isolna rangmatelani gitrango Andre Sangma aru unidol ni gitrangko gamatangen dok kolachio hazong composite program Tringni snibaju dilioni ko atakba hindi ko borang snibunga ojol jol english ko borang sni chkingo achuk maga champa ga cham rangni ngani ba mungani rango ojak marakni ngani ba mungani ko khna sona man gen sni kholgur ko andang dang ko so ote siani bidungo chanchiani ko dung thang atani ya khatha bichung ko rae agal sakam ko andang dang ko so ote siani ko champengani sal ko maniani salo Dr. Steve Cherak Armarak, neuropsychiatrist, Turani Aganani ko skangba changna watatani ko khna sona mangen. Sni kolachio Bollywood melody program mo Hindi film ni ding thang git rang ko khna sona mangen. Pringni chat pajio dilioni ko watak ba Hindi ko borang, chat chibunga pringni English ko borang, chat kolachio Shilongoni ko watak ba Salgro salaram adokni English ko borang ko jol jol khna sona mangen. Chesopriyo yes stationoni ko pringnam tura program chesopri bunga o atsk chesungtani gitrang o skangpa o chuesa mbera ch marak don bosko higher secondary school o poraing bani poidom gani ko khna chingna man gen uni jamano heaven rasang mani gitrang ko ba ga matangen pringni skuba jio dilioni ko tak ba hindi ko borang skubunga o jol jol english ko borang skuch kingo yes stationoni ko Western music program was kang pao mech grang ni bewal ngani o thang thang ko rongthale smsakke rakhiani bidungo menstrual hygiene management ni man Dr. Sipranagar College of Community Science turani English chaganani ko khna sona man gen uni jamano Western music program ko khna sona man gen sku kolachio bibit parati aaj ke fankar Kungo Hindi koborang, kungbunga o English koborang ko dilioni ko alagba ko zozo kna sona mangen. Kungo atsa songtani gitrang o pedi sangma aro bremi butan sangmani gitrang ko kna sona mangen. Kungo lachio dilioni ko alagba bibit parati program chisa o Hindi koborang, chisa bunga o English koborang, chisa kungo atsa songtani gitrang o Jenkins Moomin aro training marakni gitrangko ya stationoni ko kamatani ko khna sona mangen chisa kolachio mechkrangni program mo skhangpa o meri bat ba angni khatha betchina ji momni aganani ko khna chingna mangen uni jamano samthang thango dongba rangko rpungani o mechkrangni dakni ba khagni khamrangni bidungo Posturango pangchake aganauniko khnasona mangen uni jamano Christabel sangma maksana Iris Ingti wa trainee gitrangko ba gamatangen chigni saljachio dilioni ko adakpa hindi ko borang chigni bunga o dongkueng ba program rangko yatani ko khnasona mangen chigni chkingo achchasongtani gitrango Benedict sangma maksana Cheryl sangmani gitrangko khnasona mangen chigni kolachio Dilioni ko alagba bibit parati SMS ke bahane vives ke tarane. Chini supomo bibit parati jharoka sa o bibit parati hit super hit sa kolachi bibit parati man chahigit gni o salni English ko borang gni chibong o hindi ko borang gni kolachi o bibit parati katam o hindi ko borang katam bong o English ko borang ko khna sona man gen. Atamni bagni ba transmission ko atamni bong o supomo tokba jioni ya tura station o nikon khna sotai na man gen. Atamni dokba jio wiatani rangko khna sona mangen dokbunga osiloni ko atak ba chkoborang dok chibunga isolna rangmatelani git rangko kamatani somoyo Webster moment aro unidolni git rangko kamatangen dok kholachio na chimangni khna naske biatengba chhasungtalni git rangko kamatangen Walnis Nibajio Akaswani Tura Meghalaya Vision Development Authority Baksanangrame Meghalaya Arise Project Ni Ngo Chirung Chibiskranko Rpungna Burung Bolgrimko Sroro Namroroatna Dengtangmancha Program Ni Gatamgapa Bako Sri Maxborn M. Sangma, Divisional Forest Officer, Social Forestry and Territorial Division Bakmarani, Aganani ko Knasona Mangen, Snitch Bunga o Toki House Program mo, Film Mungsani Gitranko Gamatani Somoyo, Tal Film ni Gitranko Knasona Mangen, Sni Kolachio sponsor program Kisanvani Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni Chichatkpa Bakho Knasona Mangen Walni Chatpajun Shimang Dileoni Khawatakpa Hindi Khoborang Chatbunga O English Khoborang Chat Chkhungo Yes Stationoni Kho Western Music Program Kho Knasona Mangen Chat Kolachio Dilioni ko atakpa sports scan. Chesupri bunga o Hindi ko borang. Sku o English ko borang. Sku chibunga o spotlight. Sku kolachio bibit parati. Chkung o Hindi ko borang. Chkung bunga o English ko borang. Chkung o bibit parati program ko bun kame. Chkung kolachi bajiona knasona mangen. Yarangan da alpring salgamak aro atamna tarisogun program rang wa. Yan akaswani tura. Tauna Shimang Aganat Kamangata, Isolnar Matelani Gitranko Gamatani Somoyo, Andri Sangma Aro Unidolni Gitranko Knasona Mangen.

तारीख सन् 2026 आरो समय भ्यानल 6:30:20 पार हबा लागिसे आजिला अनुष्ठाननि आपनेगिला प्रथम गानरा हुनिबागे पाबो शिल्पी स्वरेश हाजंगला कंठनी।

থাকা হিন্দু

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1,021 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी MCD ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलों पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 여러분들 콘다킨 이스카냐?
1: 플러스 F친 콘 잉아 친구이?
0: 예, 플러스 F니 금은 온 티사 단합 남은 겐마?
1: 나마스야마 젠살론 아 잔이랑 거 자온 비엔코 블라갓급바 망라갓급바 아로 추옹급바 비타민랑 농자온 만데니 잔치아니코 불그리았다 아로 비엔 비망코바 높았다 우니 금은사 잔이랑 거 브리온 플러스 F친 낭급바 코사 브리보 우노 비타민 아로 아인 그낭 비엔 비망코 망라갓나 아로한 생발조개라 키나겠다 자아니 보스추랑 코 브리온 플러스 F니 진 낭급바 코사 브리보 야코 커미셔너리트 오브 푸드 세이프티 메갈라 실롱니겠다 위아띵아
2: singbo na song de ani jaborang ko rang na gwalinga kon
3: gwal jababi andi ba chinga de rang na manjaba ha haja gani ko tok bisini jaborang ko galani niyamode jaborang ko dingthang dingthang chumong jode upor ange galna unjaing ha
2: yanong chong mata dauni ge talgba jabul galani niyamode sonang par sonang gi jagba jaborang ko apsan chumong galdumani ko sorkari champinga ha uni ge man jaborang ko mungri dake shwali sa galna nangyen skhang pa sonang pa jaborang je hai galgman me su samjakrang aro biche rang ni bigal rang gani ge pa jaka butai na man ge pa sonang gi jabu surang je kai plastic rang aro cham surang gatham ge pa rongthalan thalata niyo jakal ge pa bus surang bri ge pa battery tube light aro glass rang
4: ah yarang ge mukho nang dakaw ode
3: unode singa kachan jaborang ko galna rang ayen
2: daloni nanthang dani takna nang gani ko rasimang takbo anthang dangi sara nokra rang ko rongthale rakhibo aro ansing baljoki dongbo ya ko jinmani nam gani na director urban affairs department government of meghalaya uyatinga
5: इतनी रात में SMS KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा लिंक पे क्लिक करता हूँ ब्लॉक ना हो जाए
6: रुको चेक किया लिंक सिक्योर है सेंडर आपका बैंक ही है KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
8: नसीमांग दाओ बॉलीवुड मेलोडी प्रोग्राम मो हिंदी फिल्म नि गीत रंग को खनांग ना मनगेन दाओ यंगिस्तान फिल्म नि गीत को खनांग खना मनगेन वन सिराज उत्पल नि रंगपा गीत आरो गिटारा मेरी खुदा या गीत खना सिमांग दाओ खनासोना मनगेन

नासिमां बॉलीवुड मेलोडी प्रोग्राम को अतानी समय उनखामे हवाई फिल्म गीत को खनासोना नहा ताउ प्रिंगनी छत पजियो डिलियोनी को अतक बा हिंदी को बोरंग छत बुंगा प्रिंगनी इंग्लिश को बोरंग छत खोला छियो शिलोंगनी को अतक बा सालग्रो सालारा मा दोकनी इंग्लिश को बोरंग को जोल जोल खनासोना मनगेन यान आकाशवाणी थुरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली

0: हावड़ा मुंबई हावड़ा दिल्ली मुंबई दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली चेन्नई हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
6: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
7: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दांव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said, these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsugura, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bangarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs.
1: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi, in between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors, and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity.
10: Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the seven high-density railway corridors. He said these routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route.
11: The seven high-density railway corridors, along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future, are being upgraded to four-line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata, and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its two diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled, along with the Delhi to Guwahati corridor.
10: Prime Minister Narendra Modi has said that the cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the five railway projects worth over 10,000 crore rupees will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. The Prime Minister also said that the cabinet decision pertaining to three multi-tracking projects worth over 10,500 crore will add additional railway network and improve connectivity across Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. He added that it will also encourage tourism, especially heritage and wildlife related tourism, and lower logistics costs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India is focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth. Highlighting women's financial inclusion, Mr. Goyal noted that India has nearly 300 million women bank account holders and provides collateral-free loans to women seeking to start their own work, including those without a credit history.
12: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman who didn't earn anything until then, has now exceeded about 30 million, whose personal income is over 100,000 Indian rupees. And we hope to continue to expand both the number and the amount. We call them Lakhpati Didis. Lakhpati as in a person with 100,000 rupees, and Didi is a sister.
10: Today is the third day of the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the GFF on Tuesday. We have more from a correspondent.
6: On the third day of the Global FinTech Fest in Mumbai, various sessions on agentic AI, tokenization and quantum technology have been organized. Union Minister Jyotiraditya Sindhia will address a session titled Connect India, Empowered Finance, Building Trusted Digital Infrastructure for the AI Economy. RBI Governor Sanjay Malhotra will address a session titled Shaping the Next Decade of Finance, Technology, Trust and Innovation. SEBI Chairman Tuhinkant Pandey, former Chairman of UIDAI Nandan Nilekani, SBI Chairman C.S. Shetty are also scheduled to address important sessions during the day. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
10: The Election Commission of India, ECI, has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls in Tripura. Various political parties, including the ruling Bharatiya Janata Party, BJP, demanded it in view of the September 28 village committee elections in the state's tribal areas. With January 1, 2027 as a qualifying date in the state, the SIR exercise, which was earlier scheduled to commence from September 5th, has now been deferred. This is Akashvani giving you the news.
13: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
10: India stepped up its humanitarian assistance to flooded Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies landed in Kathmandu yesterday. Minister of External Affairs MEA said the latest consignment includes National Disaster Response Force NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment supplies for the Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. We have more from a correspondent.
14: India's assistance comes as rescue operations continue in areas affected by flash floods in Nepal, including at the Chilimi Tunnel in Rasuwa, where an Indian team is working alongside the Nepal Army in search and rescue operations. According to Nepal's Disaster Management Authority, 13,646 people have been rescued so far in the flood-hit areas, while around 5,132 people remain missing. Among those reported missing are around 2,860 people from Rasuwa and 1,787 from Nuwakot. The missing include Nepal Army personnel, Nepal Police and Armed Police Force personnel, government employees, bank and financial institution employees, as well as foreign tourists. India's relief response began shortly after the devastating flash floods in the last week of August. The first Indian relief aircraft arrived in Nepal on August 26, carrying 10 tons of supplies, including temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps and medicines. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
10: International Atomic Energy Agency, IAEA, has referred Iran to UN Security Council for the first time in 20 years, citing Tehran's failure to cooperate with a long-running probe into uranium traces found at undeclared sites. The IAEA's 35-member board approved the resolution by 23 votes to 5 with 8 abstentions. Russia, China and Niger voted against it. The resolution was proposed by the United States, Britain, France and Germany. Referring Iran to the Security Council opens the country to possible sanctions and asset freezes. However, such punitive measures are unlikely because Iran's allies Russia and China are permanent Security Council members and can veto any punitive action. The Financial Action Task Force, FATF, has warned countries about the growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. FATF said criminals are using gambling platforms to move money without actually gambling, splitting large amounts into multiple small transactions, and placing unusual or coordinated bets to avoid detection. It has also flagged illegal and unlicensed online gaming as a major risk. India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala, Mahe and Uttarakhand during the next 2 days. The Met Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till the 15th of this month. Similar conditions are likely to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, East Uttar Pradesh and Madhya Pradesh till tomorrow. Hot and humid weather over coastal Andhra Pradesh is likely today. In the US Open, Americans Ben Shelton and 11-seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Arina Sabalenka will face 3rd-seed Jessica Pegula, while 4th-seed Coco Gauff will play Elina Rybakina of Kazakhstan. In the men's singles quarterfinals, 8th-seed Shelton stunned defending champion Carlos Alcaraz in a 5-set thriller. Tiafoe defeated fellow American Alex Mitchelson in his quarterfinal match. Both Shelton and Tiafoe are chasing the first Grand Slam final. In the other men's quarterfinals, 28th seed Belgian Alexander Blok is currently playing against unseeded Russian Karen Khachanov, while top seed Alexander Zverev of Germany will play Dutchman Botik van der Zandschulp today. News just in Philippines, 5 people have died and 86 remain unaccounted for after a fire broke out on a ferry off the Palawan province. The country's coast guard says the fire erupted on the MV June Aster as it neared its destination as a tourist hotspot of Coron in Palawan province. And now for a look at today's newspapers. It's

야, 아카스와니 주라 나시망 다오 프링남 주라 프로그램 코 크나소나 만겐.

0: Simang atsatsong tani git rangko ka matani somoyo heaven ru sangmani git rangko kna sona na ha da usku ba ju dileoni ko ata ba hindi ko borang sku bunga o english ko borang ko jol jol kna sona man gen yan akaswani tura
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
3: Women, we opened their bank accounts.
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एजेंसी बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दोनों अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। The government has cleared 8 railway multi-tracking projects involving an investment of over 20,800 crore rupees. The projects are aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency and easing congestion on key routes. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said three projects costing over 10,783 crore rupees will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding about 656 kilometers to the existing railway network.
2: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi, in between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four-lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors, and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity.
5: Prime Minister Narendra Modi has said the cabinet decision on the railway multi-tracking projects will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. He said the projects will strengthen rail connectivity in South India and benefit lakhs of people. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. India has stepped up its humanitarian assistance to flood-hit Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies landed in Kathmandu yesterday. Ministry of External Affairs, MEA, said the latest consignment includes National Disaster Response Force, NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment supplies for Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. Today is the third day of Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Union Minister Jyotiraditya Scindia will address a session titled Connected India, Empowered Finance, Building Trusted Digital Infrastructure for the AI Economy. In Philippines, five people have died and 86 remain unaccounted for after a fire broke out on a ferry off the Palawan province. The country's coast guard says the fire erupted on the MV June Aster as it neared its destination at the tourist hotspot of Coron in Palawan province. Coast guard officials say 43 people have been rescued. Coast guard captain Noemi Kayabyab said the vessel was carrying 134 passengers and crew when the fire broke out. Further details are awaited. The Financial Action Task Force, FATF, has warned countries about the growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. FATF said criminals are using gambling platforms to move money without actual gambling, splitting large amounts into multiple small transactions and placing unusual or coordinated bets to avoid detection. It has also flagged illegal and unlicensed online gambling as a major risk. India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala, Mahi and Uttarakhand during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

उन फिल्म आई अंदाज, कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म।

कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया, शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहला रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन। दिल में तो ये हसरत।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
2: Women, we open their bank accounts.
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है।

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Nasimang chasungta lagi terang ko kat mata ni sumaya pilih di sang mani lagi bagi terang ko kena sunah makna ha. Tak o bremi beten sang mani ki terang ko kat matang sekaya ki terang wa. Tunggu ba kak sani aro kak sunaka pandai ya ki terang ko kena sekana matang gen.

0: जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है इस तरह से। कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए, हाँ जब कर रहे हैं उस वक्त में, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज है।
1: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं, क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
0: बिल्कुल होती है, और सीमा
1: थोड़ा हमें बताइए किस तरह की ये लाइन होती है, क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं।
0: हाँ, ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए। वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु, सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीजों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें, हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज बहुत बुरी है। तो कार्टून में इन चीजों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
1: ये एक सीमा रेखा है।
0: हाँ, ये सीमा रेखा है, किसी का असम्मान भी ना हो, किसी का ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीजें हैं। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रही, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा, है ना, सुप्रसिद्ध गीतकार और सांसद। तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून एप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला
1: जी,
0: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
1: अच्छा
0: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है, और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है, मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है,
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार भी
0: देखते हैं,
1: देखते सुनते हैं और सराहते हैं।
0: सही बात है।
1: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
0: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
0: तू चंदा मैं चांदनी।
1: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें, जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया एक कार्टून याद आ रहा है मुझे।
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं अभी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी।
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज है
0: जी।
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था
0: जी।
1: कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकेंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीजें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज बढ़िया है और ये आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
1: पहले
0: तो वहीं खड़े रह जाते हैं।
1: बस बस।
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा,
1: विचार भी बदला है, और मैं विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है, अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, उसका मजा आता है।
0: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो आपका बनाया हुआ?
1: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेन्स लिब का जो चला था शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची और सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा झल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे की झलक मिली। अब उसके बाद वो सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है ये, मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के और उसकी दास्ता से मुक्त कराएं, पुरुष की दास्ता से। तो ये ऐसी चीजें हैं,
0: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने
1: बताई,
0: जो ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है, आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही और उसको दास्ता बता रही है।
1: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस इसको ये उसमें दिखाने की कोशिश
0: की। बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
1: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं। ये
0: 60,000 से ऊपर कार्टून आप बना चुके हैं अब तक?
1: जी जी जी जी।
0: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
1: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते अभी, मेरे तो करीब 6-7 व्यंग संकलन ही निकले हैं। बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
0: अच्छा, तो 60,000 कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं
1: जी।
0: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए,
1: आ ही गए,
0: कितने विचार और आने हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात, मतलब 60,000 कार्टून कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
1: जी हाँ,
0: है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम सुनते ही है 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
1: हाँ जी,
0: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं
1: जी,
0: एक गीत सुन लेते हैं। गीत बताइए।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
0: बहुत सुंदर गीत है ये।
1: हाँ, अमित कुमार और आशा भोसले जी की आवाज है।
0: तो चलिए सुनते हैं
1: जी
0: आपकी पसंद का ये।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: ऐसी इस तरह से
0: ये
1: सीरीज लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने काफी पसंद किया, खासतौर से महिलाओं ने।
1: जी जी जी।
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया, वो क्या, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब
0: बिल्कुल,
1: करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी।
1: हाँ।
0: तो ये निगाह

0: हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने आपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं, तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भावताव होना, ये सब चीजें तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी,
1: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं उनसे
0: बिल्कुल, यानी कि कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहां कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें, और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें, और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है, आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे, किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं
0: जी,
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिताजी नजर आते हैं
0: जी।
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर, और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं, एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं, तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं, और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहाँ विविधता
1: हाँ,
0: नहीं है
1: उतनी नहीं,
0: लेकिन
1: है।
0: लोगों में जागरूकता बहुत,
1: जागरूकता बहुत है,
0: आम आदमी से जुड़े हैं वो।
1: हाँ, हाँ,
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं,
1: नहीं होते हैं। तो जैसे हम बताते हैं हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद, और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं, कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
0: बिल्कुल।
1: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो बारहमासी है, तो उन चीजों को लेकर कि ये रिश्ते ना टूटे, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीजें बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को, तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज में ऐसे तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें जी, सुधार में
0: जी, बहुत ये बात बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
1: हाँ।
0: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना सहेजना बहुत जरूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है, नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ

0: 728 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला

0: आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

나시망나 지족바족 치마달라로 가상이 농쿠보 얘기 그밥 산만디는 그바 고가 마땅아.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: Women, we open their bank accounts.
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कौर पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: teliniko watatskhaing pa hindi ko bukhna sunamna nga ha da oya somine ba kona simangna da alsala ro athamni program rang ko somine baksa sulsul yatangna skang pa da alsalni program ko yatangna chigini ba jimini kngona simang kna ro ba yata benedict sangma ro Carol Sangmani Rikpa Cha Song Tang Ligit Rang Ho Kna Sunamat Nanggen Jol Jol Chikini Baji Minit Kola Chiyuni Gendi Bajiw Na Tengtang Tang Vivid Party Program Ko Kna Sunamat Nanggen Gendi Bajiw Ohan Apsan Station Nikon English Cover Gendi Baji Minit Chiyo Hindi Cover Gendi Baji Minit Kola Chiyo Vivid Party Program Gatam Bajiw Hindi Cover Gatam Baji Minit Pau English Cover Ko Nasimang Kena sunamat nanggen nirangan da alsan ni program wa da watam ni program ko yatang skhaya. Atam ni dokpa ji wang hana simang yata nirang aru sport rang ko kena sunamat nanggen jol jol dokpa ji minit pungaw silong stes ni wata skhaya ngepa atiko ko kena sunamat gen dokpa ji minit ji wang hana simang isol na rukdela ni git rang ko gamata ni sumayo Webster moment aru ni dol ni rukpa git rang ko kena sunamat nanggen Tok paji minit kolachio na isimang ni namliki biya tenggapa chasungutan ni git rang ko kena sunamat nanggen Sni baji ohon na isimang sponsored program Make Arise series bak ketam ko kena sunamat nanggen jol jol health, Forest Health and Water Retention Nigaman, Sri Maxbon M. Sangma, Jan Divisional Forest Officer, Social Forestry and Territory Division, Bakmarani Wachim, Uno Sandi E. Bauko interviewer Anikona Simang Knasona Matnangen, Jol Jol, Sniba Jiminit, Chibuao, Tengtang Tengtang, Hindi Film Nigit Rangko Gamatangen, Sniba Jiminit Kolachio Sponsored Program, Kisan Vani. Bak chichet ko kna sunamat nanggen jol jol chet pajim ahon Delhi ni rile kha tenga pa hindi khobor chet pajim mi wapsan station kon english khobor chet pajim mi chikungon asimang western music program ko kna sunamat nanggen chet pajim mi kolachio Delhi ni rile kha tenga pa sports ken chet pajim mi sut pribo apsan station ni kon hindi khobor scuba ji english khobor scuba ji mi chimo spotlight Sku Bajimit Kolachio Vivid Party Program Chikung Bajio Hindi Kobor Chikung Bajimit Puao English Kobor Arbon Kame Chikung Bajimit Chikungon Ni Chikung Bajimit Kolachio Na Vivid Party Program Kona Simang Bon Kame Kna Sona Mat Nanggen Irangan Da Alsal Aratam Ni Program Rang Wa Daud Biksani Zatman Na Simang Magapan Program Go Kna Sona Mat Nanggen Yana Kaswani Tura
6: Tona kraijok dalio kai chaman gino
7: baba yan takaba chani rang ni nakna din namjawa na adi chigapa chani rang kodi don tongna sa nangjok ba
6: na jok dong na mai koma sia angi khusuk chana skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chu sokot na man na nga ko na wijama
7: amba na ta preti mung jama no na sa jok de nang ni be ni namgni na sa gani ba mutum chigapa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha nang ni be ni namgni na namma cha ani mi shu samjak rang ko sa bo ha
6: yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyatinga
8: Oi Singbo, nak song dia ni jabo rang ko rang na gwali na kon.
9: Gwal ja babi, andi ba chinga de rang na manja wa ha. Haja gani khok tok bisi ni jabo rang ko galani niyam mode jabo rang ko dengthang dengthang chumong jode upor ange gal na unjaing ha.
8: Ya nong chong mata. Da uni gital ko ba jabo galani niyam mode sonung ga par sonung gi jag ba jabo rang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champing ha. Uni gman jabo rang ko mungri da ke shwali sa galana ngien. Skang ga ba sonung ga ba jabo rang je hai gal gman mi su sam jak rang aro bithe rang ni bigal rang. Gani ga ba jaka bu taina man ga ba sonung gi jabo su rang je kai plastic rang aro cham su rang. Gatham ga ba rong thalan thala ta niyo jakal ga ba bus su rang. Bri ga ba battery tube light aro glass rang.
10: Ah, ya rang gmak khona ga da ka ode.
9: Uno de singa kachan jabo rang ko galna rang ayen.
8: Da lo ni nantang tani takna na gani ko na simang takbo. Antang tang ni sa rang nokra rang ko rong thale Kibu arong ansing banjo pirungbo. Yako jinmani namgani na, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Uyatinga.

यह आवाजें थी सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था फर्स्ट लव। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे दत्ताराम।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था संतान। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे टार्जन कम्स टू दिल्ली फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और उषा मंगेशकर थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना।

0: सारे आमंत्रित कलाकार हैं।
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

0: आया बंदर भी आया छुन छुन करती आई चिड़िया
1: ग्यावस्थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी दत्ताराम ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला आदमी का गीत सुनिए, आवाज सुमन कल्याणपुर की। शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार दत्ताराम हैं।
7: आँख मिला कर

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बालक से लिया है। गीत को पंडित भरत

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने फिल्म बालक का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं गुलजार धीनवी, संगीतकार दत्ताराम, स्वर मुकेश, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों के। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: परख नहीं जाते हम इस दिल से परखते हैं दिल इस दिल से परखते हैं दिल सच कहने के आदि है हम तो सत्यवादी है
1: जब इससे नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसे कही
0: एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह जब नाम लिया जी दिल थाम लिया तो कैसे कही
1: बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है दिलदार मिले तो ऐसा मिले क्या बात कही।
2: दत्ताराम की संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट। गायिका है सुमन कल्याणपुर।

अच्छे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल भी हो गए हैं, है ना? दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बात करते करते अक्सर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं या खिलखिलाने लगते हैं, और उनका ये खिलखिलाने का जो अंदाज है हमें बहुत लुभाता है ना? होता है ना? तो बस आज हम कुछ ऐसे ही गीत भी लेकर आए हैं जहां इन फिल्मी गीतों में बीच बीच में हमें सुनाई देगी एक प्यारी सी छोटी सी हंसी। जी हाँ, आप सभी ने हमने जब देखा कि फेसबुक पेज पर आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है जहां पर नायक या नायिका या यूं कहें गायक या गायिका गाने के दौरान हंस भी रहे हैं।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी गानों में एक मासूम सी नटखटपन घुली होती है और जब किसी धुन के बीच में अचानक से कोई खिलखिलाहट या कोई प्यारी सी गुनगुनाहट सुनाई दे जाती है तो लगता है जैसे किसी ने सुरों के आंगन में आकर रंग बिखेर दिए हों। कहीं उस हंसी में कोई मीठी सी शिकायत

की शरारत अच्छी लगती है। हमारे फिल्मी गीतों में इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो शरारतों से और खूबसूरत बन गए हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल, अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत हैं जहां पर गायिका हंसती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना और खिलखिलाना सच में जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफे हैं जब और उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, हंसने और मुस्कुराने का कोई भी मौका हाथ से हमें नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सुंदर।

एक कोने में किसी बच्चे ने चुपके से रंग बिखेर दिया हो, क्या बात है। ये हमें याद दिलाती है कि माइक के उस पार कोई मशीन नहीं बल्कि धड़कता हुआ इंसान खड़ा था जो गाते गाते उस लम्हे में खो गया। ये हंसी गीतों को अमर बनाती है क्योंकि सुर भले ही

चिलचिला की कजरी सुनाई, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार हैं। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मजा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित

लेकिन सामने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं और हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बीच में सुनाई देने वाली ये हंसी जैसे किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी

अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर

कड़ी की अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दो

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी की है और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।

0: तक आप।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

जहन में हुस्न की ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

बनने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: पास की जो चीजें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुम्हड़ा है, तो इन चीजों पे वो चित्र बना रही थी। तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही
1: बिल्कुल
0: आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी

0: साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है ना?
1: बिल्कुल। एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलियामड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर करते जाइए और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई हैं, तो इस तरह से आप उनको

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझ पर हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: तो आरती, हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियां बहनें सारा समेटती रहती है, उनके दोनों हाथ चलती रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं, वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
7: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक, बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं। तब तो आपकी अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
6: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
7: वो भी उसका।
6: और कई बार ऐसा मुझसे निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोकझोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है, मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह इन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोकझोंक घर में होती है सफाई के समय। तो
7: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई नोकझोंक या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती है, और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती है। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती है, और कहती है कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूँ, भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
6: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई नोकझोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जहाँ जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती नहीं,
7: और थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है।
6: वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार को आपको जुटना पड़ेगा।
7: जो सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
6: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल।

तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है, मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है, मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि

0: के बाद भी 1 घंटा निकल जाता
1: और
0: है
1: कई बार तो
0: खड़े
1: साथ
0: खड़े।
1: जिसके साथ आप बातें कर रहे हैं ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए। तो उनको भी लगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ एक कप चाय पी लेता हूँ, तब पता चलता है।

0: दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो करती करती वो तो फेमस है लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं। महिलाएं तो अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर उनको पूरी खबर रहती है कि यहाँ क्या चल रहा है,
1: पूछते भी है।

0: करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि अब हमें जाना है निकलना है काम पर।
1: और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत।

माफी की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर।

0: क्या सिल रहे हैं?
1: घनी बैग का काम है।
0: बैग का?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
1: मेरा को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं जी।
0: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
1: ये उम्मीद का है ना, एक मुझे इसके तुझे से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, बहुत सारे गाने हैं मैडम उनके तो।
0: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
1: घर का नाम बबलू है मैडम।
0: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये
1: जी
0: बबलू,
1: जी
0: है ना?

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो DTH पर भी सुन लेते हैं बहुत।

0: कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
1: जी जी मैडम,
0: जी तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है।

0: गुल, कैसे हैं आप संतोष
1: हम
0: जी?
1: अभी आज भी अच्छे हैं मैम। तो
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: अरे वाह! पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी

0: मौका बोलते हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है ताई।
1: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
0: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदा जिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। चाहिए
1: चलिए अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज।
0: हाँ जी।

0: रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम

नासिमांग अलखा याग्नि गारु उदित नारायण नि रंगबा गीत ताल से ताल मिला गीत को खना सोना मनहा दाओ जोल जोल नासिमांग ना हरी हराम आरो सुखविंदर सिंह नि रंगबा अपसान फिल्म नि गीत नही सामने तू गीत को गमतांस का गेन।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
2: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों,
3: सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन
4: किसानों के साथ साथ हम भी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और हमारे प्रसन्नता का कारण यही होता है। इसमें हम बात करते हैं खेत खलियान की, मौसम की, क्या क्या नई तकनीक हमारे किसान भाई अपना रहे हैं।
5: कमलेश, इस कार्यक्रम में हमारा यह प्रयास रहता है कि हम अपने किसान भाई बहनों से जुड़े हर विषय पर बात करें ताकि उनका उत्पादन भी बढ़े और आमदनी भी दोगुनी हो।
4: और जब आप बात करते हैं आमदनी दोगुनी करने की, उसमें हम उन्हें नई नई जो जानकारियां होती हैं वो हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं।
5: और यही बात है कि आज हम इस विषय पर बात करेंगे, जलवायु सहनशील कृषि भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र पर, बताएंगे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव, देंगे मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर।
4: भारत में जिला स्तर पर कार्यरत प्रमुख विस्तार संस्थान है ये, जिनका उद्देश्य अनुसंधान विस्तार संबंधों को मजबूत करना है और किसानों को वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है। इनकी उत्पत्ति शिक्षा आयोग से मानी जा सकती है, जिसने व्यावसायिक कृषि शिक्षा पर जोर दिया था। इसी के आधार पर ICAR ने किसानों, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में KVK की स्थापना की है।
5: आज भारत में 638 ग्रामीण जिलों को कवर करने वाले 731 कृषि एवं स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क है, जिनमें से पहला केंद्र 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। और इनका जो उद्देश्य है वो है कृषि प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और किसानों के खेतों में उनका प्रदर्शन, ताकि उनका उपयोग किया जा सके और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। किसानों, महिला किसानों, युवाओं और विस्तार कार्यकर्ताओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता का विकास करना भी इनका एक उद्देश्य है।
4: किसानों और अन्य हितधारकों को निदान और कृषि संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए एक सूचना और ज्ञान केंद्र के रूप में भी ये कार्य करता है। किसानों को उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री और अन्य तकनीकी इनपुट का उत्पादन, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विभिन्न विभागों और संगठनों की कृषि संबंधी चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय और साझेदारी विकसित करता है।
5: तो भाई, ये तो बात थी कृषि विज्ञान केंद्र की। और देखिए कमलेश, आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
4: जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके पास इतनी तकनीक होती है कि उन तकनीक को अपनाकर वो अपने कृषि कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और अब ये जरूरी भी हो गया है कि हमारी खेती भी बदलती जलवायु के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, जलवायु सहनशील कृषि भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली।
5: डॉक्टर अनंता, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
6: नमस्कार
5: डॉक्टर अनंता। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जलवायु सहनशील कृषि है क्या?
6: तो इसे हम एक टाइप से कहेंगे कि एक पद्धति है जिसमें खेती की हम तकनीक है, डिफरेंट तकनीकों को हम अपनाते हैं। जैसे फसल का चयन कैसे करना है, हमको डिफरेंट जो संसाधन है हमारे, चाहे वो इरिगेशन का है या अपनी मृदा है, उसको किस प्रकार से हमको रखना है, इन सबको हम अपनाते हैं। इसको अपनाने से जो कृषि प्रणाली है जिसमें जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे कि आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जलवायु परिवर्तन है और उससे उत्पन्न होने वाली खतरे हैं। जैसे आप देखते हैं बेमौसम वर्षा हो रही है या बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, कई जगह आप देख रहे हैं कि बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है, कई जगह सूखा आ जाता है। ये सब जो जलवायु परिवर्तन से जो चरम मौसमीय घटनाएं हो रही हैं, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें हमारी जो कृषि है, जो हम खेती कर रहे हैं, इसका जो असर है उसको हम कम से कम करें या ना के बराबर करें, तो हम इसके लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं और हम उसको कहते हैं जलवायु सहनशील कृषि कर रहे हैं। और इसको अपनाना हमारे लिए आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो अगर हमको अपना कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, ये जलवायु सहनशील जो कृषि है इसकी पद्धतियों को हमको अपनाना ही है।
5: डॉक्टर अनंता, कि आपने जैसे अब बताया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारतीय कृषि और खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?
6: जी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज से कुछ सालों पहले हम कहते थे कि होगा, लेकिन आज के दौर पे हम देख रहे हैं हो रहा है। तो इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे कृषि पे पड़ता है, जो हमारी कृषि की उत्पादकता है, उसका जो गुणवत्ता है, उस पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा बारिश हो गई तब भी हमारी खेती इस पे असर करती है, कम बारिश हो गई, सूखा जैसी स्थिति आ गई, तो हमारी फसलों को इससे असर पड़ता है। जो

0: फसलों का जो विभिन्न चरण है उसमें उसका उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है, तो इसका सीधा असर उसकी गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता पर पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन का जो सीधा असर है वो आपकी खेती पे होता है, मौसम का काफी असर उस पर पड़ता है। और इसको कम करने के लिए हमें जो जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु सहनशील कृषि को अपनाना होगा, जिसकी जो पद्धतियां हैं उनको हमको अपनी खेती में लाना होगा, जिससे हमारी जो कृषि है वो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको झेल सके और अपनी उत्पादकता को हम स्थिर रख सके।
1: डॉक्टर अनंता, कि क्या इसमें पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य पर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं जलवायु परिवर्तन से?
0: क्योंकि जलवायु परिवर्तन मीन्स आपके जो चरम मौसमीय घटनाएं उसमें आपकी बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो आपका हीट वेव है, गर्म हवाएं चलना है, शीत हवाएं अभी आएंगी, या बेमौसम बारिश है, तो इस वजह से खेती तो प्रभावित होती है, इसके साथ साथ जो हमारे पशुधन है उन पे भी इसका असर पड़ता है, हमारे मानव स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है।
1: और खाद्य सुरक्षा किस तरह से प्रभावित होती है?
0: जी, जैसे कि हमारे अगर पशुओं पे इसका असर पड़ेगा तो जो पशुओं से दूध का प्रोडक्शन है या आपका फिशरी से है तो इन सब पे आपका असर पड़ेगा। तो जो आपके खेती में जो उत्पादकता गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, ऐसे ही आपका जो है हमारे पशुओं से जो उत्पादन मिलता है, चाहे वो दूध है या आपका मांस है या आपका अंडे है, इन पे भी असर पड़ता है।
1: डॉक्टर अनंता, आपने बड़े विस्तार से दुष्प्रभावों पर तो बात की कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, लेकिन अब इन चुनौतियों को जो हमें सामना करना है, तो जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को हम किस तरह से अपना सकते हैं, ये क्या पद्धतियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: जी, इसमें तो सबसे पहले हमारा फसल प्रबंधन आता है, जैसे हमको मौसम के अनुसार जलवायु सहनशील किस्में लगानी है, जैसे जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ सूखा ज्यादा आता है या यहाँ पे बाढ़ की स्थिति ज्यादा बन जाती है, तो हम सबसे पहले फसल को अपनाना है और उनकी किस्मों को अपनाना है। जैसे अगर हमको पता है कि हमारा जो एरिया इसमें ज्यादा बारिश होगी, जो वाटर लविंग क्रॉप होती है, जैसे हम खरीफ में ही कहेंगे कि धान को जो है पानी ज्यादा पसंद है, तो हम फसल लगा सकते हैं, उसके बाद हम उस किस्म को अपना सकते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो विभिन्न संस्थान है उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसलों की कई प्रजातियां, कई किस्में जो है डेवलप की हैं, जो सूखा को भी सहन कर सकती है, बाढ़ जैसी स्थिति को भी सहन कर सकती है, इवन आपकी कई बार जैसे टर्मिनल हीट स्ट्रेस आता है, मैं कहूंगी जैसे आपका गेहूं का ही है, गेहूं की आपकी बुआई हो जाती है नवंबर में, आपकी बुआई हो जाती है फरवरी मार्च में भी, आपने अक्सर देखा होगा उस समय टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि टर्मिनल हीट स्ट्रेस आ जाता है। उस समय आपकी जो गेहूं की फसल है वो आपकी दुधिया अवस्था में रहती है या आपकी ग्रेन बनने की अवस्था में रहती है। तो अगर आप जो है टर्मिनल हीट स्ट्रेस वाली जो वैरायटी है जो हमारे संस्थान ने उसको डेवलप किया, वो अगर आप वैरायटी लगाते हैं तो उस पर असर कम पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो फसल का चयन करना है, उसके बाद उसकी किस्मों का चयन करना है, उसके बाद अगर आपने ये चयन कर दिया तो उसके बाद आपने डे टू डे मौसम आधारित खेती पे ध्यान देना, मौसम पूर्वानुमान का नजर रखते हुए उस पर किस टाइप के आपको प्रबंधन करने हैं आपकी फसलों पे, क्योंकि फसल को जो है ईच एंड एवरी चरण जो उसके बुआई से लेकर कटाई तक का जो समय होता है उसमें उसको उपयुक्त वातावरण देना होता है
1: जी।
0: तो उस समय भी आप देखते हैं कि मौसम में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उतार चढ़ाव मौसम को देखते हुए अगर मौसम आधारित आप खेती कर रहे हैं, उसमें उस आधार पर प्रबंधन कर रहे हैं, तो आप अपनी फसलों को एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, उसमें उत्पादन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको फसल विविधीकरण करना है, आपको एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना, आपको मिश्रित खेती आपको करनी है, आप उसमें दलहनी फसलें भी आप लगाइए, आप उसमें सब्जी वगैरह मतलब अन्य फसलें भी लगाइए, मिश्रित आप खेती कीजिए। तो इसमें क्या है, कई बार आपका मौसम में बदलाव आता है, तो अगर आपका फसल पर असर पड़ता है तो आपका जो दूसरी फसल से कंपनसेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा फसल चक्र को अपनाना है, क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हैं, उससे क्या फायदा होता है कि अगर आप एक ही फसल को लगातार लगा रहे हैं तो उसके जो कीड़े और बीमारियां आती हैं, एक बार आ गए तो आपने फिर दोबारा वही फसल आपने लगा ली तो ज्यादा नुकसान करती है। अब जैसे आपने सपोज इस समय एक फसल लगा दी, आपने गेहूं लगा लिया, उसका नेक्स्ट बार आपने दलहनी फसल लगा दी या मस्टर्ड लगा दिया, सरसों लगा दिया, तो उसमें क्या मृदा की भी उर्वरकता बनी रहती है और आपको जो बीमारी या कीड़े आने हैं उससे भी आपको राहत मिल जाती है, क्योंकि एक फसल की बीमारी कीड़े दूसरी फसल पर नहीं आते। तो अगर इस बार आपकी बीमारी उससे थोड़ा नुकसान हो रहा तो अगली बार आपने दूसरी फसल लगा ली तो उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप कैश क्रॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं, कम अवधि की अच्छी किस्में उनको आप लगा के कम समय पे ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको जल प्रबंधन करना है, जैसे जल प्रबंधन भी आपकी काफी जरूरी, आजकल देख ही रहे हैं कि जो बारिश होती है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि बारिश से सारा पानी बह जाता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत। तो मैं तो ये कहूंगी कि आपको एक सरोवर या तालाब जो है खेत के आसपास आप बना लीजिए, जो सरोवर है उसमें आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और जब आपका ड्राई पीरियड होता है उस समय आप उसको किसी पंप के जरिए फिर से खेतों में डाल सकते हैं, तो आपका एक तो खेत का पानी फिर से खेत में आ जाता है, तो जो खेत से आपका जो

0: रख बह के उसमें चला गया, वो फिर से खेत में आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको जैसे ड्रिप इरिगेशन है उसको भी आप कर सकते हैं, या आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इससे आपकी पानी की भी बचत हो सकती है। इसके अलावा आप हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, तो हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करोगे, गोबर की खाद है आपकी, जैविक खाद है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। दूसरा जो है उसमें पानी को अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता बढ़
1: जी
0: जाती है। ये सारी तकनीकें आप अपना सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी जो विभिन्न ऐप हैं, डिजिटल तकनीकी है या
1: जी जी
0: प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, इसको भी आप अपना सकते हैं अपनी खेती में। जैसे आप डिजिटल तकनीकी को अगर आप अपना रहे हैं, तो आपके ऐप हैं, आपके डिफरेंट मौसम आधारित ऐप उसमें उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आपको सटीक जानकारी समय रहते मिल जाती है। अगर आपको सटीक जानकारी समय रहते मिल जाती है, जैसे मौसम की जानकारी है, उसके आधार क्या कृषि प्रबंधन आपको समय रहते करना है, तो आप वो समय रहते वो प्रबंधन कर देते हैं, तो आपका नुकसान ना के बराबर हो जाता है और आप अच्छा वातावरण फसल को मिल जाता है, तो आपकी उत्पादकता भी अच्छी होती है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसके अलावा प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जैसी मैं बात कर रही हूँ, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से भी आप प्रिसाइज, जैसे कह रहे हैं ना, सेंसर तकनीकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, AI आधारित आप IoT बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर अगर आप खेती करते हैं, तो आपको सही समय पर सही मात्रा में आप उसमें उर्वरक भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, तो इससे आपका क्या रिसोर्स की सेविंग होती है, साथ में आपका फसल में जो हानि है, चाहे वो कीड़े आने या बीमारी आने या आपको सॉइल मॉइस्चर के डिप्लीशन हो रहा है, कमी हो रही है, तो आप सही समय पर उसको प्रबंधन करके आपकी फसल को अच्छा बना सकते हैं, उसमें उत्पादकता अच्छी ला सकते हैं और साथ में आपको रिसोर्स का भी सेविंग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर अनंता, जैसे कि अभी आपने डिजिटल तकनीक की बात की, आजकल ड्रोन के द्वारा भी खेती हो रही है, तो क्या ड्रोन के द्वारा जो खेती होती है वो भी इसमें सहायक है?
0: जैसे अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका ऑर्चर्ड ही है बड़े हैं, कई बार उनमें पानी डालना है या आपको कीड़े बीमारियों की निगरानी करनी है, उसमें स्प्रे करना है, तो इसमें भी आपका ड्रोन की जो तकनीकी होती है वो काफी लाभकारी होती है। जैसे लार्ज एरिया आपका है, तो आपका ड्रोन में क्या होता है कि सेंसर कैमरे फिट होते हैं उसमें, थर्मल कैमरा भी आपका होगा, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा आप उसमें लगा सकते हैं, तो उसको एक बार आप पूरे खेत में लार्ज एरिया पे आप उसको सर्वे कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम है। आपकी ये प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट की भी हो सकती है, आपके डिजीज भी हो सकता है, या वाटर की कमी भी हो सकती है, तो आपको जैसे कमी पता चल गई कि मेरा इस एरिया पे ये कमी है, तो आप उसको प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। आपको उसको प्रोग्रामिंग देना, अगर फर्टिलाइजर आपको चाहे तो आप उसमें दे दे कि भाई आपका ये फर्टिलाइजर की कमी है, वो जाके उसी पॉइंट पे आपका स्प्रे कर लेगा, तो इसमें एक तो आपके समय की बचत हो जाती है। आप जैसे पेस्टिसाइड अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है जो भी कोई लेबर कर रही है तो उसको हेल्थ का भी इश्यू हो जाता है तो स्प्रे करते समय, तो आप एक तो सेव कर रहे हैं इसको, या आपका ऑर्चर्ड ही है, ऑर्चर्ड में आपका करना है, ड्रोन के जरिए अगर आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं, तो आप कम समय में प्रिसाइज करके आप लागत में भी कमी कर सकते हैं और प्रिसाइजली उसको करके आपके समय की भी बचत हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे ड्रोन तकनीक है, थोड़ी तकनीक महंगी हो सकती है, लेकिन जो छोटे किसान है वो इस तकनीक का कैसे फायदा ले सकते हैं?
0: जी हाँ, इसमें तो छोटे किसान है तो उनका खेत का एरिया भी कम होगा, तो उनको कम्युनिटी बेस पे तकनीकी को अपनाना है कि सारे जैसे अपना गांव में छोटे छोटे खेत हैं अगर उनके, तो सारे मिल के, क्योंकि कम्युनिटी बेस पे अगर आप ड्रोन हायर करोगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको फायदा भी उससे मिलेगा, तो करके आप उसको कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस पे इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जलवायु सहनशील कृषि में क्या हम रासायनिक निर्भरता को भी कम कर सकते हैं?
0: हाँ जी हाँ, इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा जो हमारे हरी खाद हैं, या हमारे जो गोबर की खाद हैं, या जैविक खाद हैं, या हम नेचुरल खेती को जो अपना रहे, प्राकृतिक खेती जो अपना रहे, उसको हम ज्यादा से ज्यादा अपनाते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हम करते हैं, क्रॉप रोटेशन हम करते हैं, तो इसमें जो रासायनिक उर्वरक है इनका ना के बराबर या कम से कम प्रयोग करते हैं। और दूसरा, जैसे हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, हम बिना मौसम की जानकारी के कर रहे हैं,
1: जी
0: तो कई बार हमने उर्वरक डाल दिया, ऐसे समय पे कर दिया, हमारा तापमान ज्यादा है या सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा है, तो सोयल मॉइस्चर भी ऑब्वियस है उसमें कम होगा, जो तत्व है उनकी जानकारी हमको नहीं है, तो अगर उनकी जानकारी नहीं है तो हमारा मृदा का तापमान भी ज्यादा है, मृदा से वाष्पोत्सर्जन होता है वो ज्यादा हो गया, तो उस मृदा में नमी भी कम है, और हमने ऐसे समय में उसमें रासायनिक उर्वरक डाल दिया।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में अधिक संस्थाएं और देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति चिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
4: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। श्रीमती मुर्मू ने आगे आगा खान विकास नेटवर्क के समाजसेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत की खबर है। सरकारी प्रसारक के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत के साथ मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। New Delhi is geared up to host the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. Top leaders of the grouping, including Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, will be attending the BRICS summit. The visit is expected to be a high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. The Delhi police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit. Giving details about the security arrangements, Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agarwal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. He informed that around 15,000 Delhi police personnel and 200 companies of paramilitary forces have been deployed in the national capital for the security arrangements. Specialized surveillance cameras have also been deployed along routes to be used by visiting dignitaries. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
5: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said, India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said, the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by the Aga Khan Development Network. She said it demonstrates how non-profit organizations working in partnership with the government can improve people's quality of life. The government has amended the Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 to tighten norms on price transparency, sponsored listings, search result manipulation, and dark patterns. Under the amended rules, e-commerce entities will have to disclose the reduced price and prior price whenever a price cut is announced. The prior price has been defined as the lowest price at which the product was offered in the 30 days before the discount was announced. The rules bar e-commerce entities from manipulating search results that mislead users or affect the relevance of results to a search query. The amended rules will establish a more transparent, accountable and consumer-centric e-commerce ecosystem. Secretary of Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar today reviewed the functioning of all media units of the ministry operating in Kashmir. The secretary reviewed news and programs of Akashvani and Doordarshan and took stock of campaigns and outreach activities of Press Information Bureau and Central Bureau of Communication. The secretary expressed satisfaction over the overall functioning of the media units. India made a strong start at the World Parachuting Championship, winning 1 gold, 2 silver and 1 bronze medal on the opening day of the event at Changwon in South Korea. India stormed into the semifinals of the Women's Junior Hockey Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan at Mochi in China today. And with that, we end this news bulletin.
6: This is Akashvani Tura. The time is 8:10 p.m. Welcome back to our Western music program. You have just heard the Hindi and English news relayed from Delhi station. And now it is time to relax and enjoy some beautiful melodies from the world of Western music. And in our Western music program, we bring to you songs by Hilary Duff. The songs are Stranger and Dignity.

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकल के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डाली जाए आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर 13 वर्षों बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना जैसिका पेगुला और कोको गॉफ का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए आज क्रिकेट के मैदान की खबरों के साथ। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज दुबई में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर के 53 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। विशेष, शुरुआत में ऐसा लगा था कि स्मृति के जल्दी आउट होने के बाद टीम की पारी लड़खड़ा सकती है, लेकिन एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई।
1: बिल्कुल शक्ति, स्मृति मंधाना 9 रन के स्कोर पर, टीम का जब स्कोर 9 रन था तब आउट हुई तो समर्थकों में काफी चिंता देखी जा सकती थी, लेकिन अब शेफाली वर्मा और प्रतिका रावल के बीच ये जो साझेदारी हो रही है ये अब 44 रन की हो चुकी है 36 गेंदों पर, और शेफाली वर्मा 25 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रही हैं जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। वहीं प्रतिका रावल 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए 1 छक्के और 1 चौके के साथ 18 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रही हैं। बांग्लादेश की तरफ से सुल्ताना खातून ने 1 विकेट लिया है। तो ये इस मुकाबले में भारतीय टीम की सधी हुई शुरुआत कही जा सकती है, जहां पहले काफी कम रन बने थे लेकिन अब 8 ओवर में 53 रन बना लिए हैं 6.62 के रन रेट से, जो कि एक काफी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत। लेकिन भारत के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में जो चिंता का सबसे बड़ा सबब रहा वो है मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों का बड़े स्कोर ना करना। टीम कई खिलाड़ियों को देखा गया, कई बार हरमनप्रीत को वो शुरुआत मिली या फिर प्रतिका को थी शुरुआत मिली, लेकिन उसको एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना टीम के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ शुरुआत के, खासकर दोनों मुकाबलों में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ। इसके इतर गेंदबाजी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की बात अगर की जाए खासतौर पर, जिन्होंने अपने आंकड़ों से अपनी गेंदबाजी से साबित किया है, तो बांग्लादेश के सामने कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला यहाँ पे भारत को जरूर मिलेगा। तो भारतीय टीम किस मोर्चे के लिए कितनी तैयार नजर आती है?
1: अगर भारतीय टीम के अभी तक सफर की बात करें शक्ति, तो भारतीय टीम के सभी प्रतिद्वंदियों को काफी सफर करना पड़ा है इस टूर्नामेंट में, वो भारतीय गेंदबाजी के दम पर, क्योंकि जिस डोमिनेटिंग अंदाज से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है कोई भी टीम भारत के सामने टिक नहीं सकी है और 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। हालांकि आज बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छा मुकाबला देखने की उम्मीद है, क्योंकि एक बांग्लादेश ने भी अच्छा शुरुआत ली है 1 विकेट लेकर, और इसी के साथ अब भारतीय टीम अगर ये सेमीफाइनल मुकाबला जीतती है तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से फाइनल में भिड़ेगी।
0: जी बिल्कुल, और अगर हमने भारत की बात की तो दीप्ति शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक 4 मैचों में 8 विकेट जबकि श्री चरणी 7 विकेट ले चुकी हैं। और इसमें सबसे खास है कि दीप्ति शर्मा का जो एवरेज है वो 1.25 का है, यानी 1.75, यानी कि बहुत किफायती रही हैं, मात्र 14 रन दिए हैं। और वो पहले मैच का शानदार स्पेल जहां पे सिर्फ विकेट उनके खाते में थे और कोई रन नहीं दिया, और देखा जाए तो प्रेमा रावत ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है, नंदिनी शर्मा ने किया है। तो भारतीय गेंदबाजों से आज उम्मीद होगी कि वैसी ही लय बरकरार रखें और इस टूर्नामेंट में भारत के लिए फाइनल का रास्ता और क्लियर करें और भारत महज 2 कदम दूर है और उस 2 कदम की दूरी को टीम पाटने का काम करे। और अब महिला एशिया कप के बाद बात की जाए दलीप ट्रॉफी की। ईस्ट जोन की टीम ने 13 वर्षों बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन को चेन्नई के M.A. चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर विजेता घोषित किया गया।
2: ईशान किशन के शानदार दोहरे शतक की बदौलत पूर्वी क्षेत्र की टीम ने तीसरी बार दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इससे पहले टीम ने वर्ष 2012-13 में आखिरी बार ये खिताब जीता था। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्वी क्षेत्र ने पहली पारी में 108 रन का स्कोर बनाया। कप्तान ईशान किशन ने 30 चौके और 7 छक्के की मदद से 270 रन की यादगार पारी खेली। वहीं कुमार कुशाग्र ने 101 और शिखर मोहन ने 85 और अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में दक्षिण क्षेत्र की टीम कप्तान तिलक वर्मा की 99 रन की पारी के बावजूद 336 रन ही बना सकी। तिलक के अलावा देवदत्त पटिगल ने 62 और चामा मिलिंद ने 43 रन बनाए। गेंदबाजी में पूर्वी क्षेत्र की ओर से मुकेश कुमार ने 3, मोहम्मद शमी, कुरैशी और शिखर मोहन ने 2-2 विकेट लिए। पूर्वी क्षेत्र को पहली पारी के आधार पर 372 रन की बढ़त हासिल हुई। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र ने फॉलो ऑन देने की बजाय दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने दूसरी पारी में मैच ड्रॉ होने से पहले 7 विकेट खोकर 388 रन बनाए। ईशान किशन ने दूसरी पारी में भी 80 रन की पारी खेली। वहीं मोहम्मद कुरैशी 116 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में हासिल बढ़त के आधार पर पूर्वी क्षेत्र को विजेता घोषित किया गया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच और तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन जीत ईस्ट जोन के हाथों, और कह सकते हैं कि कप्तान ईशान किशन की वो शानदार पारी जो शायद ये टीम और ईशान किशन वर्षों तक याद रखना चाहेंगे। विशेष
1: बिल्कुल शक्ति, ईस्ट जोन ने ये खिताब जो है 13 साल बाद जीता है। इससे पहले इस टीम ने 2012-13 में ट्रॉफी उठाई थी, और ईशान किशन जो जिस भी टीम की कप्तानी की कमान संभाल रहे हैं उसको फाइनल खिला देते हैं। झारखंड में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम को फाइनल खिलाया और पहली बार खिताब जिताया। उससे लेकर अब तक का सफर जो रहा है बहुत ही शानदार रहा है, और इस मुकाबले में जो बल्लेबाजी उन्होंने करी है बहुत ही ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करी है। पहले इनिंग में 270 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 80 रन बनाए, तो 350 रन उन्होंने अकेले ही बना दिए, और वहां साउथ जोन की जो पूरी टीम है वो सिर्फ 336 रन ही बना सकी। इस फाइनल की एक खास बात यह भी रही कि दोनों कप्तानों ने शानदार प्रदर्शन किया शक्ति, क्योंकि ईशान किशन की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तिलक वर्मा जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में भी 99 रन की पारी खेली, अपनी टीम की तरफ से वो अकेले योद्धा की ओर साबित हुए। जो ईशान किशन है उनका उनको एक मलाल जरूर रहेगा इस मुकाबले में कि वो 320 रन का जो रिकॉर्ड था रमन लांबा का उसको तोड़ने से थोड़ा चूक गए, और ये जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है बतौर कप्तान ये बेहद सराहनीय।
0: जी बिल्कुल, आपने ईशान किशन और तिलक वर्मा की बात की, और 3 मुकाबले खेले, 5 इनिंग में 409 रन बनाए ईशान किशन ने, और 2 मैचों की 3 इनिंग में 266 रन तिलक वर्मा के। तो ये दोनों खिलाड़ियों ने सफेद जर्सी और लाल गेंद के सामने खुद की प्रतिभा को साबित किया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ईशान किशन बतौर विकेटकीपर बात होती है, बतौर बल्लेबाज बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दावेदारी की है कि ईशान किशन बतौर कप्तान भी बात की जाए। क्रिकेट के मैदान के बाद अब रुख निशानेबाजी का। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा और मिली शाह की तिकड़ी वाली भारतीय टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि निशानेबाज मोना ने इसी स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में रजत और अवनी लेखरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं राजेश निंदागुड़ी, आनंद कृष्णा और स्वरूप उनारकर की भारतीय पुरुष टिकड़ी ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने 1856.3 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, और इसी के साथ ही देखा जाए तो भारत ने आज एक और टिकट अपने लिए, पहला टिकट 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स के लिए कन्फर्म कर लिया है, जो कि मिला है अवनी मोना को। मोना ने पहली खिलाड़ी बन गई है 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स का टिकट पाने वाली। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
3: गत विजेता भारत ने मैच की शुरुआत से ही पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत ने मैच के 7वें मिनट में ही पहला गोल करते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। भारत को ये सफलता पूजा साहू ने दिलाई। इसके ठीक 2 मिनट बाद रोशनी एंड ने भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अटैक जारी रखा और अगले 5 मिनट में भारत ने 3 और गोल दागे। तनुश्री दिनेश काडू ने 11वें, सुखवीर कौर ने 13वें और सानिका चंद्रकांत माने ने 13वें मिनट में गोल किया। धमाकेदार पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में भारत का अटैक और धारदार हो गया और भारत ने इस हाफ में 5 और गोल किए। भारत ने हाफ टाइम तक 10-0 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद 39वें मिनट में मधु सिदार ने 1 और गोल किया और 1 मिनट बाद सुप्रिया ने भी मैच का अपना पहला गोल दागा। इसके बाद पूजा मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49वें और 51वें मिनट में लगातार 2 गोल किए और अपनी हैट्रिक पूरी की। कृष्णा शर्मा और बिनिमा धन ने भी गोल किए जिससे टीम की बढ़त लगातार बढ़ती गई। सुप्रिया ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा जबकि रोशनी ने मैच के आखिरी मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और भारत की 19-0 की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। भारत ने जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से खेलेगी। मौजूदा चैंपियन भारत लगातार 3री बार जूनियर महिला एशिया कप का खिताब जीतने से सिर्फ 2 जीत दूर है। टीम ने 2023 और 2024 में भी ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो एक शानदार जीत जहां जब भारतीय टीम उतरी तो एक के बाद एक गोल की बारिश पाकिस्तान टीम के ऊपर, और जब तक पाकिस्तान की टीम ये समझ पाती कि आक्रमण कितना जोरदार है, स्कोर बोर्ड पे स्कोर 19-0 था और भारत ने एक तरफा ढंग से इस मुकाबले को जीता और ये बताया कि क्यों इस प्रारूप में, इस वर्ग में भारत इतना सफल टीम है और क्यों भारत ने पिछले 2 बार ये खिताब जीता है। और महज 2 कदम दूर भारतीय टीम अब अपने लगातार 3रे खिताब से, खिताबों की हैट्रिक से। और अब अंत में कार्यक्रम में बात की जाए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जिसके सिंगल्स सेमीफाइनल की तस्वीर एकदम स्पष्ट हो चुकी है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे जहां पे आर्यना सबालेंका होंगी, जैसिका पेगुला होंगी, कोको गौफ होंगी और राबाकीना, ये चारों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और विशेष कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, खिताब से दूरी बहुत कम है, एक एक दो दो मुकाबलों की। किस किस खिलाड़ी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और क्या तस्वीर है?
1: शक्ति, अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराया था और पेगुला ने हम वतन खिलाड़ी एम्मा नवारो को मात दी थी। वहीं कोको गौफ ने रूस की 5वीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा को हराया और रायबरकीना ने चीन की झेंग किन वेन को बाहर का रास्ता दिखाया था। तो महिला सिंगल्स में काफी कड़े मुकाबले हमको देखने को मिले। और अगर सेमीफाइनल्स की बात करें तो आर्यना सबालेंका का मुकाबला जो है जेसिका पेगुला से होगा, वहीं कोको गौफ का मुकाबला एलिना रायबकीना से खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों का विजेता का फाइनल मुकाबला जो होगा वो 13 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो फ्रांसिस तियाफो ने अपने ही देश के एलेक्स मिचेलसन को हराया था। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेन शेल्टन ने बड़ा उलटफेर करते हुए कार्लोस अल्कराज को मात दी थी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और कैरोन कचनोफ ने भी अलग अलग मुकाबलों में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और अब जो है मेंस सिंगल्स में भी काफी कड़े मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे जहां फ्रेंच ओपन 2026 के विनर अलेक्जेंडर ज्वेरेव कैरेन कचनोफ के सामने खेलेंगे और फ्रांसिस तियाफो जो है वो बेन शेल्टन से मुकाबला करेंगे जिन्होंने हाल ही में कनाडा ओपन का टूर्नामेंट जीता था। तो काफी कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे और पुरुष सिंगल्स का भी फाइनल जो है वो 13 सितंबर को ही खेला जाएगा।
0: जी बिल्कुल, तो 13 सितंबर को फाइनल होगा कि कौन खिताब को उठाता है, वर्ष का ये 4था ग्रैंड स्लैम। और आपने बेन शेल्टन की बात की, सबसे अधिक मेरे को लगता है नजरें उन पे रहने वाली हैं क्योंकि वो जीत जो क्वार्टर फाइनल में आई है डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज के ऊपर 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 से शायद उनको फेवरेट्स बना देगी। और अंत में चलते चलते एक बार विशेष स्कोर बोर्ड पे वापस नजर डाल दी जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला जारी है, क्या स्थिति है इस समय?
1: अगर भारत और बांग्लादेश के मुकाबले की बात करें शक्ति, तो 10 ओवर का खेल हो चुका है जहां भारत ने 59 रन बना लिए हैं और 2 विकेट गंवा चुकी है। स्मृति मंधाना पहले ही आउट हो गई थी, अब प्रतिका रावल भी पवेलियन लौट चुकी हैं 24 गेंदों पर 20 रन बनाकर, और ये विकेट रबाइन खान ने लिया है।
0: जी बिल्कुल, और लोगों को बता दें कि शेफाली वर्मा अभी भी क्रीज पर डटी हुई है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
4: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
5: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
4: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
5: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड, वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
4: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में

0: कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान में

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहला रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव की बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ की बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव की बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे दो दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फताह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कल से 11 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान आम जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलीखनोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और किसी के हताहत न होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत न होने देना। भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में बिना कोई विकेट खोए 20 रन बना लिए थे। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 149 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
2: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. India is the current chair of the influential grouping. Several world leaders will participate in the summit, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping are expected to arrive tomorrow. The BRICS summit will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi-led government has completely transformed the country's disaster management system and set the goal of zero casualty. Mr. Shah was speaking while chairing the third meeting of the governing body of the National Institute of Disaster Management in New Delhi. Mr. Shah said the government is focusing on three pillars, which are risk reduction, early warning systems and zero casualty. India and Russia today held talks on joint production of civil passenger planes and potential deliveries and arrangements for 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu held discussions with Russia's Industry and Trade Minister Anton Elikhanov in New Delhi on joint manufacturing of civil passenger aircraft to meet the country's demand for regional air connectivity. The government has amended the Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 to tighten norms on price transparency, sponsored listings, search result manipulation and dark patterns. Under the amended rules, e-commerce entities will have to disclose the reduced price and prior price whenever a price cut is announced. India made a strong start at the World Para Shooting Championship, bagging four medals, including one gold, two silver and one bronze on the opening day of the event and Changwon in South Korea today. The Indian women's team of Mona Agarwal, Avni Lekhra and Millie Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. In hockey, the Indian women's team stomped into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi today. And that is the end of this news bulletin.
0: Namaskar.

यह गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे पेश करेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

कुतरात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ ना कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।